0: दत्वा मिदिल्लवल पुराण विहारस्थानेति सह नाइम्बल मध्य विद्यालय परिश्रेदी
1: बौद्ध उर्वये अभिमाने समरान्ने बोतुसी पुपुदान्ने ओबाद एक वान्ने
0: राज्य विसक मंगल्य हा विसक कलापे सजीव तोरतुरु लखनी
1: बेतेपर अनुग्रहय श्रीलंका आयुर्वेद औषध संस्था अजीर्ण तत्व वलिन पीड़ा विदिन ओबट गुणदायक स्वाभाविक विसंदुम संस्था रसम श्रीलंका आयुर्वेद संस्थावे साडंबर निपैयुमकी।